साहब जी नमस्कार, करता हूँ जय सीताराम। ऑन एयर मिल रहा है और टाइम मिला लेते हैं। सुबह के 5:17, 10:11, 12 सेकंड हुए हैं सर।